खड़ग केत, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हासद लेह उबारी सर्व ठौर मो दुष्ट दोख ते।

जिसनों करे रहम तिसना विसारदा, आप उपावन हार आपे ही मारदा, सब किस जाने।

0: सेवया तिन पाया मान नानक गाविय गुणी निदान
1: गाविय सुनिय मां रखिय भाव दुख पर हर सुख घर लै जाए
0: गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहया समाई
1: गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार।

0: पावे मोख
1: दवार
0: मने मार्ग ठाक न पाए मने पथ जो परगट जाए
1: मने मगन चले पंथ मने धर्म सेती सनवंद
0: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए
1: मने पावे मोख द्वार मने परवारे सधार
0: मने तरे तारे गुरसिख मने नानक पावे ना भिख
1: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए
0: पांच परवान पांच प्रधान।

0: असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताउ
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास
0: असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख

छिन सजै है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल, तैसे जात आज है, तैसे जात आज है, राम सिमर।

संपद बनता विनोद, छोड़ गए बहु लोग पो हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलेओ है मूड नंग, चोआ चंदन देहे फूलिया, सो तन धर संग रुलिया, सो तन धर संग रुलिया, सो तन धर संग रुलिया, मोहे मोहे आ जाने दूर है, कौ नानक सद

ते मगन भए ले बलाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह

अवस्थ जग मंडल करयो, जह कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो, जय सिख है संग्रहयो तत हर चरण मिलायो। तिन बेदियन की कुल बिखे प्रगटे न

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा।

जेवा एक कमन गुल कही है। बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही सतगुरु।

निरंकार आकार कर सतगुरु गुरां गुरु अविनाशी पीरा पीर वखाणिए नाथा नाद साध संग वासी गुरमुख पंथ चलाया गुरसिख माया विच उदासी सनमुख मिल पंच आखियन बिरद पंच परमेश्वर पासी गुरमुख मिल परवान पंच साध संगत सच खंड बिलासी गुर दर्शन गुर शब्द है गुर दर्शन गुर शब्द है निज घर पाए भगत रह रासी मिठा बोलन निव चलन खट खवालन आस निरासी सदा सहज बैराग है कली काल अंदर परगासी साध संगत मिल बंद खलासी निरंकार आकार कर सतगुरु गुरां गुरु अविनाशी।

वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेवया अंतवार रे मन सेव तू पर बाल बद त्रिलोचन गुरमिल पही स्वच्छ सिद्ध बेणी को कुर कियो प्रगास रे मन तू भी हो है दास जय देव त्याग्यो अहमे नाई उधरयो सैन से मन डीग न डोले कहूं जाए मन तू ही तरसे शरण पाए मन तू भी तरसे।

मूरख मुग्ध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आस मन तारी। जप तप संयम कर्म ना सादा, नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी, बिनवंत नानक ओट प्रभ तोरी। किछु न जाना मत मेरी थोरी, बिनवंत नानक ओट प्रभ तोरी। कोई ना किस ही संग काहे गर्बिये, एक नाम आधार पौ जल तरबिये। मैं गरीब सच टेक तू, मेरे सतगुर पूरे।

तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान, तीर्थ दास पूरब सदा दा।

रावण हार शब्द सुहावनो सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संक पावे सहज नावे बेनीता संगम सत सते आराद एक अंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कह सब कोए के वड आखिए हो मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मान्या मेरा कूच करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा आखन तोड़ना भगत पंडारी भरपूर रहया सोई नानक साच कह बेनती मन माजे सच सोई आखन तोड़ना भगत पंडारी भरपूर रहया सोई नानक साच कह बेनती मन माजे सच सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जान में जन्म की मैल गई, जन्म जन्म की मैल गई, गुरपुरै मेरी राख लई, गुरपुरै मेरी राख लई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की सात गुर पूरा फेटिया, जिन बणत बनाई राम नाम औख दिया, एक काल बुलाई राम राख लिए रखन हास ब्याज।

0: हर जन हर हर नाम सुनाड़े, दुख जन्म मरण पाप खंडाए, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोव खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हर राख राख वरवड़ा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नाम में ही सुख मंडा है। राग गौरी पूर्वी मना पंजवा, करो विनती छोड़ो मेरे मीता, संत टैल की वेला इहा खाट, चलो हर लाहा आगे बसद सुहेला, औद कटै दिर सरै डारे, मन गुर बिल कार सुवारे, रहाओ ए संसार विकार सुसे बै, रियो ब्रह्म की आदि सह जगाए पिया वे रस कत था तुम जानी, जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा, निज कर बैल पाओ सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा, अंतर जाबी पुरख बिदाते, शरदा बर की पूरे, नानक दास है सुख मग, मोको कार सल्तन की अंतर जामे पुरख के पूरे, नानक दास है सुख मग, मोको कार संतन की पूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: Thank you.